0: और मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो
0: मैं पाचू
1: ईटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो
2: नुआसे डमाफिनुआसे डॉक्टर एजी सिंह से
3: जाने प्रोडक्शन.

0: मार मैं पाचू
1: इटी विन्यो और रेडियो इटी विन्यो इबी काय और रेडियो के कैन और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी विनो और रेडियो पियम चुन के रे वेर क्वारो
0: पियम चुन के रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल आ लोको कामु पेने
1: इटी विनो और रेडियो
3: हेलो क्लास.

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो इटीनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो पियोम चुन के वेर क्वारो बीमार मैं पाचू
0: बीमार मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी रोटा